0: ऐसे मीमांग के चोनी नाचें बे चेतन जो लाता चेवन जितना नाचें बे पासा ला नील फ्यूचर किना निंगे तेरी ऐसे मीमांग के चारों नाचा वाता तम्जे यूफ़े के देशां तो वे मिंडी शुजुता किना निंगे कुसुं तेरा दांग अने किना निंगे चावलां तो अने यूफ़े के देशां तो वे मिंडी शुजुता
1: नेसे चुनाला तोजे ना शुजुता
0: अने लेसे लेसे अने तिदा से जंगा तरी के नारे थम्जे ती Okay, Sandra, to what it is, has a Sandra to what the term to do this you in Gala.
1: Yes, sir.
0: Okay, near Toko Sango, Sanchuna, Sanchu, Toko, Wongji, like a tone and a Ongdo, Nidong, the Wat City, Latan, Dawala, Sunam Dawala, Pasan City in La, Today, Sela, Trishian Zella, Chok Jensan La, Ujian La, Nesibi, let's say, Okay, Sandra, Yongban. Tagnan Hingi, Tese, Tante Kongli Shunya, Tokuni Motin to get so nande, Kugula, Ada Tigila, Jensan Tigila, Oamula, Nesibi, but Tishino, Samula Sunja de Pija, Dr. Sundi number Tachana Shujuta, Kinanda, I mean, Pita number Kundu, Kusum Sedanda, Tudin Hindu, I mean, Ranga Sonsu Chale, and Karada Karana in Ale, and Telang on the Liku, you were Mindy Shujuma. ランランソセチャレ、ニュースレギンテサントウィミンディシュグインレ。ネセンラ。レセレス、アネニトゴ、ニムトゴサンゴニムディンドタンディ、ジュンセジマティンドスメンガテイスンバコランレアニタ、ニャテリゲスンジェディ、チンアプジェ、チランゲアニ、トブラソバ、アニ、ディドギ、シュメラソバ、ディドルチェナジェアニ。
1: 故事里，土家干嘛拿了那许久单？俺们面对吧单，没有他，俺们兄弟也不难着。哦，既然用心的，叫俺们有多大家有俺们的学问嘞。那是了。那是了是，俺们这里，嗯，三座，嗯，他们了，前几年呢，他呢，不要在城里修他们什么公共马路了，那许久单，俺们就是三座古学啊，一家了。嗯，三座记多了。
0: Sunset,